कहो टल गुर सेवियह एन सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों झटिया तुर डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पा

0: ना कोई
1: जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई
0: किव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी किव जाना
1: नानक आखण सबको आखे इक दो इक सियाना
0: बड़ा साहब बड़ी नाई कीता जा का हुवे
1: नानक जे को आपो जाने अगे ज्ञाना सोहे
0: पाताल पाताल लख अगासा अगास
1: ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहने क बात
0: सैस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात
1: लिखा होए ता लिखिए लेखे

0: दर केहा सो घर केहा जितवै सर्व संभाले।
1: वाजे नाद अनेक संखा केते वावन हारे
0: केते राग परी सोकेयन केते गावन हारे।
1: गावे तुनु पौन पणी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे
0: गावे चित गुप्त लिख जन है लिख लिख धारो बिचारे।
1: गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले।
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे।
1: गावन पंडित पण रखी सर जुग जुग बेदा नाले
0: गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले।
1: गावन रतन उपाए तेरे अठसठ तीरथ नाले
0: गावे जोत महाबर सूरा गावे खाने चारे
1: गावे खंड मंडल पर पंडा करकर रखे तारे।
0: से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भक्त रसाले
1: और केते गावन से मैं चितन आवन नाने क्या विचारे।
0: हुई सुवि सदा सच साहेब साचा साची नाही
1: हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई।
0: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जन पाई
1: कर कर वेखे कीता अपना जिब तिसी वडियाई।
0: ज्योतिष पावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई
1: सो पात साहब ओ साहा पात साहेब नानक रहन रजाई।
0: मुंदा सतोक सरम पचोली ध्यान के करे बपूत
1: खिंथा काल कवारी काया जुक्त डंडा प्रतीत।
0: आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।
0: भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद
1: आप नाथ नाथी सब जागी रिद सिद्ध अबरा साध
0: संयोग बिजोग दो कार चलावे लिखे आवे भाग
1: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।
0: इका माई जुगत वे आई तेन चेले परवान
1: एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान
0: जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान।
1: ओ वेखे ओना नदर ना आवे बहुता एहो बड़ा
0: आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस।
1: आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सो एका वार
0: कर वेखे सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस।
0: एक दू जीबो लख होवे लख होवे लख वीस
1: लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश
0: इतरा पत पवड़िया।

0: नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रही मे नमस्तंग करी मे
1: नमस्तंग महंते नमस्त रागे नमस्त सुहागे
0: नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता
1: नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले
0: चाचरी शांत वाय प्रसाद
1: अलेख
0: है अपेख है अनाम है अकाम है
1: जीता पीता
0: त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है

0: नमो काले काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व गौणे
1: संगी परमाथे नमो पान पाने नमो मन माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने
1: नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: अनंगिया नामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बपुते
1: कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश परम रूपे
0: नमो जोग जगेश परम परम सिद्धे नमो राज राजेश परम परम
1: शस्त्र पाणी नमो अस्त्र मान नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते नमो जोग जगेश परम परम जुक्ते
1: नमो नत नारायण गुरु कर्म नमो प्रेता प्रेत देव विश्व धर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाह नमो पूप
1: नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोग नमस्तं शनाने
0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र
1: तंत्र प्रणाशी रूपे रूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अदो उर्धर दंग अगंग उंग हरता
1: परमेश पालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग
0: अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त साम तेरा जोर चाचरी
1: जले तले पीता पे है
0: प्रभु है अजू है अदेश है अपेस है पचंग पर्यात शंद
1: वादे नंदी स्वरूपे नव सर्व मान समस्त निदाने
0: नमस्तंग निर्थापे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो मा
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व
1: प्रीतंग नमो परम तारंग नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्रंग
0: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे
1: नमो बीज बीजे खिजे भिजे समस्तंग प्रसजे
0: पालंग स्वरूपे को कर्मंग पन्नासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्ध निवासी चरपट शांत वै प्रसाद
1: अमर धर्मे खल जोगे चल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग
1: दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वं पाने सर्वंग माने
0: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता
1: सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले
0: अरवाल शांत वै प्रसाद
1: आदि मूर जोन पुरख पार
0: सर्व मान तिरमान देव पेवादो दार
1: सर्व पालक सर्व कालक सर्व

0: चकर बकर फिरे चतर चक मानिए पर
1: जाप
0: आद देव नाद मूर था प्यो सवे जय थाप
1: मूर्त पूर्ण पुरख पार
0: सर विस्यो रचियो सुजम गणन पंजन
1: कला संजोग काल पुरख देश
0: धरम ताम सो परम रहत पूत लख
1: रंग जग जात पात नाम
0: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक
1: पुरख अवधूत
0: गर्भ गंजन पंजन आदि रूप सूत
1: नाथम एक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व

0: सर्वंगंता सर्वंग्याता सर्वंग्याता
1: सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणिं सर्वंगत्राणिं
0: सर्वंगधर्मं सर्वंगयोगता सर्वंगमुक्ता
1: रसावल शांतवाय प्रसाद
0: नमस्ते सदा प्रकाशे नंगं स्रूपे पंगं विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: नामेतर पंगेतर कामनर पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते
0: न मितो मिके सदा प्रभा है जय है आजा है
1: भगवती शांत वै प्रसाद
0: के हाजर हजूर में सुसलाम है समस्त कलाम है
1: साहेब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: के राज कर हिंदा करीमल कमाल है कुशल जमाल है
1: गरीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकान है हरासल पिकाने
0: प्रणाश समस्त निवास है गंजन गनीम रजाय करीम है
1: समस्त जुबा है के साहेब किरा है के नरकन पर नास है वैसल निवास
0: सर्व भगवान में सर्वान तमाम तुम्हें जय समस्तल जी जाए
1: परम परमीश है समस्तल अधीश है अदेशल लेख है अमेशल अपेक
0: जमामि कलि मै करी मुल कमाल के जुरत जमाल है
1: की अचलंग प्रकाश है के मितो सबास है के अजब स्वरूप है के मितो विपुत है
0: के आत्म प्रभा के चलंग नांग के मितो अभंग है
1: मद पार शंत वै प्रसाद
0: प्रणाम गुण गण मुदामर रंगा झर नर पर पंज
1: अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड वर नर अमंड
0: आसमन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम
1: अंचिज अंग आसने अपंग उपमा पार गत मित दार जल थल
0: मन दसवस पण जल थल मन दसवस बेअंत
1: अनुभव नास तिरतर तरास आजान बाहो एक सदा हो
0: बारात कथनी नाद खल खंड ख्याल गुर बर काल
1: कर कर प्रणाम चित चर नाम अंचिज गात आजिज ना बात अंचिज गात
0: अंरंज बात अंटट भंडार अंठठ पार
1: आठीत धर्म अठीत कर्म अनभन अनंत दाता महंत हर बोल मना शंत वै प्रसाद
0: कल खल खंडन है मह मंडन है
1: जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है
0: करण जाके करणा मन माने है जग जाने है
1: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्व पासे है सर्वनाशे है
0: परम संग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
1: प्रेम मंड से है खल खंड से है परते पर है करना
0: करता कृता अमृता अमृत है
1: अमृता अमृत है करना कृत है कृता कृत है धरनी धृत है
0: अंतेश्वर है परमेश्वर कृता कृता अमृता अमृत है
1: अजब्बा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खल खायक है
0: संपरा करुणा ले नर प्रनायक है सर पायक है
1: पापंजन है अर गंजन है रिप तापन है जप जापन है
0: सर्वा कृता करता कर हरता है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस के जसे पचंग प्रयात
0: नमो सूर सूरजे नमो चंद्र चंद्री नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज
0: संशांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते
0: लंकर लंके नमो शासन भंग भंके
1: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी चंद
0: जल पब
1: अभू अजू अनास
0: गज भंज लख पख
1: अकाल दयाल अलेख
0: नाम काम का हटाह
1: अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी रागिन
0: रंगिन रूपे न रेखे
1: अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पचंग परियात शंद
0: समस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे गंजर नामे समस्तल निवासे
1: निरकामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग पर नासी सो धर्मंग
0: सदा सचदा नंतरंग पर नासी करि मुल्क निंदा समस्तल निवासी
1: अजाय बैपूते गजाय बगनी में हरियम करियम करीमल रहीम
0: चक्र वर्ती चतर चक्र

0: राजा बैठा कहु संपयो शंकर कैठा
1: सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सजंभव
0: मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो
1: दुष्टिते उठवतो तपाता सकल मलेश करो
0: रण तत्ता सरणी परितन के दोष दुख्त हुआ मरे
1: गोरख जवन पग

0: आनंद लाग सवारिया,
1: बाजों का करे विचारिया,
0: आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया,
1: गुरु कृपा करे प्यारिया,
0: कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया,
1: तुटा तन का शब्द सच्चा सवारिया,
0: कहे नानके हो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा
1: जस्तु दे सोजन पावे पावे ता सोजन दे जसनूर के करें विचारिया,
0: एक परम भूले फिरे दे दे सिक नाम।

को सिमरै से पतवंते। प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमौताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्ला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै

सिमरे से जन जन को प्रभ मया, नानक तिन जन शरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप।

मुश्किल हो व्यत भारी अर को नाम खिन माए उधारी अन पुनः चरण करत नहीं तर अर को नाम कोट पाप पर रह गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखी अर का नाम जप तो है सुखिया ला करोरी बंद ना पर अर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तिख ना बुझावे अर का नाम जपत अगावै जे मार गे जात के ला त्यार नाम संगो सुहेला सनाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है।

संग जे मार के गन जाए न को सार का नाम हुआ संग तोसा जय पैंड मैं अंध गुबारा हर का नाम संग जे आरा जापन तेरा को ना सिंझानू हर का नाम ते नाल पछानू जहां महा प्यान तप्त वो काम तेर के नाम की तुम ऊपर शाम जा त्रिका मन तुझे करख है ते नानक हर हर अमृत बरख है भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात अर्जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन कै ब्रत बबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाय बियोग

बाहुबली नुक्कड़ का राष्ट्रपति कई कोड़े पुजारी कई कोड़ा चार बिहारी कई कोड़ा तीर्थवासी कई कोड़ बन पर मेवदासी कई कोड़ वेद के स्रोत है कई कोड़ के सर होते हैं।

कोट भय माने कई कोट अंध ज्ञाने कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिज्ञातम निकोर कई कोट पर द्रव को हिराय कई कोट पर दुख न कराय कई कोट माया शरमाय कई कोट पर देश भरमाय जित जित लाओ तित लगना नाने करते की जाने करता रचना कई कोट से जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सरव पंखी सरव पाए कई कोट पास पात्र विघ्न विजाए कई कोट पौन पाणी बै संतर कई कोट दे सुमंडल कई कोट सिर सुरण कैतर कई कोट दे दाविंदर सिर छात्र सगल समग्री अपने सुतार नानक जिस जिस भाव है तिस ते निस्तार कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण समृत हर सास दे कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट के चर जीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीव कई कोट जाख निरपिसाच कई कोट भूत प्रय सुकर मेर गाच सब ते निर सब ते दूर नाल क्या बल पुत्र भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नोक्ष निवासी कई कोट जन्म जीव मरे कई कोट बोझ नि फिर कई कोट बैठती खाए कई कोट का लथ कपाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तय तय राखे नानक सब की प्रभु के हथ कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तुम लागी कई कोट प्रभु को हो जनते आत्म मैं भाग नहंत कई कोट दर्शन प्रभु व्यास तिन को मिले प्रभु विनाश कई कोट मांग सत्संग पार पुन तुन लागा रंग जिनको आव सो प्रसान नानक ते जन सा धन कहन कई कोट खानी रखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट अवतार कई जुगत किनो विस्तार कई बार पसर पसार सदा सदा एक ओंकार कई कोट किन्ने वो भात प्रभु तो प्रभु माय समाता कंध न जाने को आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो ते आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई को नाम रस पी अमृत पै सत सदी जीव है कई को नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को सा समारे नानक होए परमेश्वर के प्यार।

प्रवाल कौ हो बहुत राजा कौ भिखारिणी का साजा कौ आप कृष्ण मयावे कबू बड़ा बड़ा कहा भय जो प्रभ राखे ते वीर गुरु प्रसाद नानक सज कहे कबू हो पंडित कर ख्यान कऊ मून तारी लिया त्यान कबू तड़ तिरथ नान कबू सत्सद मुख ज्ञान कबू कीड़ा सुतंग हो जियान कजुण परमे परमैया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभावे ते मचावे जो तिज पावे सोई होए नानक दूजा वरण खोए कबू साध संगते पावे उस स्थान ते बहुन आवे अंतर हुए ज्ञान प्रकाश सन का नहीं विनाश मन तन नाम ते करांग सदा से पार के संग जो जन्म चले कटान त्यों ज्योति संग जो

गुणवंत सोत विष्टा का जन आपस को करवंत कहावे जन्म भरे बोजुन परमावे तन पू का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे तन मंतावे कर करवावे तरुण समा को संग न जावे बोलस करमान को ऊपर करे आस पल पितरता कवे विनाश सावते आप जाने बलवंत किन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदे आंकारी तन मराय ते करे खुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटे मान सो जन नानक धर गए बलवान कोट कर्म करे उतारे शरम पावे सबल सगले वीर तारे तपस्या करे अंकार नर सुर फिर हिरे अवतार आनंद जतन करे आत्म दरवे हर दर के को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निपने आवे।

जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म हृदय सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नान खो छूटे सस कटे लाख उड़तावे तृप्त न आवे माया पाचे पायण को के करे न तृप्त आवे खब का मरे बिना संतोख नहीं को लाजे स्वप्न मूर्त विरते सब काजे नाम रंग सर्व सुखो है।

सत्संग चरण चलो मार गोविंद मिटे बाब जपे हर बिंद कर हर कर्म सर्व हर कथा नानक हर दर के नानक उज्जल मथा बड़भागी ते जन जग माए सदा सदा के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत गुणे संसार मन धन मुख बुले हर मुखी सदा सदा जानु ते सुखी कोई के कोशाने तुद कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिने निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपने आप सूझे तिसकी जानो तिस न पूजे सासंग हर हर जस कह सर रोग ते और जन रहते अंतिम कीर्तन को ज्ञान के स्तमय सोए निर्वाण एक उपरिजन की आशा तिसकी कटिए जम की फस पार ब्रह्म की समान भोग नानक तिन लाग है दो जिसको अर भवन तिथि आवे सो सन सोए लाने डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा कर है सो से को कृष्ण डर है जैसा सा तैसा दिष्टा अपने कार्य आप समाया सो दसी जिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोए असूल नागी जन्मे नाग सिमरे अपन चल दिया भी करे आम जाम दृष्टियां दृष्टि आज्ञाकारी थारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मै आप अनक जुग द्राज था बुधा अविनाशी नाई किस खांडी तारन तारे ब्रह्मांड अलख पे कुरता पुर कुरता बाप जपाय नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सो बावन सकल संसार उद्रत मंत्र प्रभु के सेवक सो उदारन प्रभु के सेवक दो सारन आपे मेले कृपाले गुरु का शब्द जपे निहारन की सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुषोत्तम कर मान जो कुछ करे सुप्रभ के रंग सदा सदा से यार संग सह समाय होए सो होए करणे यार पहचाने सोए प्रभ का किया जन मीट लगन जैसा सा तैसा दिष्टान जिस ते बुझे ते समाय समाय सुगुण दान उन्हों बने आए आप सुखो आप दीनो मान नानक प्रभ जाने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभिरथा जान नहार जा कै सिमरण नानक दिस बलहार टूटी वन हर गोपाल सर्व जिया पेपर पाल सगल चिंता सिमर माए तिस्ते विरता कोई नाय रे मन मेरे सदार जाप अपना सी प्रभ व्यापे आप अपन की अक्ष नोय जसो प्राणी लोचे कोय तिस्मिन नाय त्रे कुछ काम गत नानक जापे करनाम रूपवंत ना ही मोहे प्रभ की जो सरल घट सो है धनवंता हुए क्या को गर्भ ज सब कुछ तिसका दिया दर्भ असुरा जे को कावे प्रभ की कला बिना कहतावे जे को होय बह दातार ते दिन हर जाने गवार जो गुरु प्रसाद टूटे रोग नानक सुजन सदा रोग जो मंदिर को थामे थमन तो गुरु का शब्द मणि स्थमन जो पंखा नाव चढ़तरे प्राणी गुरु चरण लगत निसारे जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरुदर्शन देख मन होय विकास जो माव ध्यान में मार्ग पावे तो साधु संग में जत उठावे तिन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मर मूर्ख काय विलाय पुरुल के कल के पाई है दुख सुख प्रभु देव हारे अवर त्याग तू तिहार जो कुछ करे सोए सुकमान भुला काय फिरे अजान कौन बसताई तरसंग लपट रस लोय पतंग राम नाम जब हृदय माए नानक पासे तीघर जाए जिस वकर को लैन तू आए राम नाम संतन कर पाए ताज मान ले मन बोल राम नाम हृदय मैं तोल लाद खेव सुनता संचाल अवर त्याग किया जंजाल धन धन कह सब कोय मुख उजल दर कह सोए पर बिरला फारे नानक ता के सदल हारे चरण साध के तो प्रियो वर्प साध को अपना जियो साध तुर करो स्नान साधु प्रजाय कुर्बान साध से बड़ भागी पाए साध संगर कीर्तन गाए अनुकुंते साधु राखे यार गुण गाय मृत चाठ चाखे उड़ गए सुनते दरे सर सु नानक ते पाए मृत को जीवालन हार भूखे को देव तदार सवन दान जाके दृष्टि माए पुरुल कल न पाए सब किस तिस कम करने जोग तिसमें तू सरोवन हो गए जब जन सदा सदा दिन रैनी सब तो ही निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थी जाके मन गुर की प्रतीत तिस जने आवे हर प्रभ चीत भगत भग सुनिय ते लोए जाके हृदय को होए सच करनी सच जा की रहत सच हृदय सतमुख है

वसुपरसन्नस्तवे अवनासी ब्रह्मन् मेराकमानु की तो प्रीति आक्तिस्ते परे ने किसको शर्म निरंतर को सोय आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद कृपाण अंध्याल बख्श

मंत्र जाने होर अनंत रूप मंगल सब जाके सर्व तोकनी करता के राज में राज जोग में जोगी तब मैं तभी सर्व किस में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाए नानक किस प्रकार के अंत न पाए जाकी लीला की मितनाए सकल देव हारे उगाए पिता के जन्म को जाने पूछ सकल प्रोहि अपने सोत सुमत के अंत अंजन दे जनदास नाम ते आवे से तय कुण मैं जा को परमाए जन्म रे फिर आवे जाए जिन के स्थान जय सजन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भी क्रय करंग नाना भी किनु विस्तार परुणा से कंका नाना चल करे किन माए पूरे पूर्ण सब ढाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब कर दिसके सब दिसके ठाव जब जब जीवे नान करना नाम कुतारे सगले जंत नाम कुतारे खंड गुरु नान मंड नाम कुतारे समृत भेद पुराण नाम कुतारे सुनन के अंत अंत नाम कुतारे कास बसाल नाम कुतारे सगले कार नाम कुतारे पुरिया सब हम नाम के संग दरे संसरण कर कृपा से अपने नाम लाए नानके चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाक सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतू सत सत जाकी वाणी सतपुरुख समय समाणी जाकी रचना जाकी रूप सत सा करतू सत सा जाकी वाण सतपुरुख समय समाणी सत गर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उद्भात सत करणी निर्मल निर्मल सेव जाय तिशाणी सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतन गुरते पाई सत भजन सत उपदेश सत तेजन जा कृदे पुरोय सत नृत पूजे दे कोय नाम जब ताकी गत होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर तो गर्ण हार अपन पूज करते विचार करती कि मित न जाने किया नानक ज्योति स्वभाव है सो वरती है विस्मण विस्म भाई विस्माद जिन बुझा तिशा स्वाद प्रभु के रंग राज जन गुर के वचन पदार्थ ले दाते दु कट नार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सो उड़भागी जन के संग एकली उलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर पर साध नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अशबय चरण सत सत पर संहार पूजा सत सत से उदार दर्शन सत सत विकनहार नाम सत सत आवनहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सजा सुनता बुजन हार को सत सवोय नानक सत सत प्रसोय सत सुरूर दे जिन मानिया करण क्राम तुन मूल पछाने जाकर दे विश्वास प्रवया तत् गयन तुन मन पकड़ाए वह ते निर्भय विसाना जिस देव जद समाज समाना बस समाज ले बस गुडाए ताको भिन न कह न जाए बूझे बूझन हर विवेक नारायण मिल नानक ठाकुर का सेवक आगे कारी ठाकुर का सेवक सदा पुछारी ठाकुर के सेवक मन प्रति ठाकुर के सेवक निर्मल हित है ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभाल नार सेवक की राख निकार सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का पर्दा डाके अपने सेवक के सर पर आके अपने दास को देव डाय अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आप राके ताकि कदम कोई न लाख प्रभु के सेवक को कौन पहुंचे प्रभु के सेवक को इत उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाए नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कर लाके पसंद करे लस्कर को लाके जिसका सास न काटते आवता को राख देख रहा मानस जतन करत बात तिसके करत बिरथे जात मारन राखे और न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक परलोक विडाण बारंबार बार पोज पिया पी अमृत मन तंद्र पिय नाम तन जिन गुरु मुख पाए तिसके साहब नय दिष्टाय नाम तन नाम रूप रंग नाम सु कर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवताने मन तन नाम में नाम सुमाने उठत बैठ सूत नाम कहो नानक जन के सदकाम बोलो जाजे वादन नाल प्रभु ने जन किन्नी जात कराए भगत आत्म कह चाहे प्रभु ने सो रह समाए जो हुआ हो सो जाने प्रभु अपना कौन पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह कर जानो आठ पर पूर्व सहजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओढ़ ले मन तन अपना तिन जानदे जिन जन अपना प्रभु छाता सुजन सर्व थोका दाता तिसकी सरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाव मिटावे और से आनु सगली साड ते जन की तू सेवा लागे आवन जान न होवे तेरा नानक ते जन की पूजो सद भैर सलोक सतपुरख जिन जाने
ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕਾ ਸੰਗ ਸਿਗ ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਵਾਸਤਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਆਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਦੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਾਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਲ ਟੋਲ ਸਵਾਰੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛੁ ਜਨਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤਿ ਆਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤੋ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਬੀਸ ਬਿਸਵੈ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਾ ਜਾਣੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰਨਾਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਵਲ ਜਾਓ।

मरण को कामना संजय पूर्ण करता अपना स्वयताप जम की त्रास को होए जावे अवगत गोचर प्रावे का तब चतुर को तो बस बस दले का जब नाथ रंजन गोचर का देता कौन छुटे कौन बंधन में दे अपने आप आप ही छर जा नानक अपन रूप आप ही भर जा जय निर्मल पुरुख पुरुख भदोता तब निर्मल कहो कहतोता जय निरंजन निरंकार तुम निर्वाण तय कौन कुमान कौन मान जय स्वरूप केवल जगदीश तय सर सदगत कहो केश जय जो स्वरूपी जो संग समावै तक से भूकम त्रिपतावे करण करावण आप करण करावण करण यार नानक करते गण समार जो अपनी जो भाई अपन संग बनाई तब कौन माए बाप पितृ सुदवाय जय सर्व कुला पे प्रभुहीनता बेगते कहो कोचीन जब अपने आप अवतारे तो सगन अप सगन का विचार है जय अपने उपज अपने नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विषम विषम समाध नानक अपनी का जन हुआ जय सल से भिषम से व्यापत माया भगवा पे दे तय कुण का नाई पर जय कह के भगवंता तय कौन किन किस लागे चिंता जय अपना भव दियार तय कौन कुदे कुण सुन यार बहु बेअंत ते उचा नानक पसुका पे बहुचा जय पर जो प्रपंच कार तय गुण मैं किन विस्तार पापुन तय पै का उत को नरको सुरक मचाओ ते अल जाल माया जिन जाल हो में मोह भरम तय पार दुख सुख मान अपमान प्रकार के वगया ने अपन के लिए अब कर देखे के संगो चेतो नानक के जब गुरु भक्त आप जय बसरी पर सार संतरा दो बा का पे रन की जो बाण बनी

श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कै दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुन हार आपे का विस्तार जाति भाव तसर पाए भाने लय समाये फिर नहीं कुछ होए आपन सुजा रोए जाकू रब जी आप जाए सत नाम सोई जिन पाए सो सुंदर सी दत्त कवेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब तेहा दीन दयाल नाथ को ना जिस राके कोई न मारे सो मुआ सुमन विसारे तिस तयावर कहाँ को जाए सब श्रेख निरंजन राय जी की जुग जाके सवा अंतर बार जानो सा गुणिदान बेअंत बार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूरे दया सब प्रत कृपाले अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याह प्रत पाले जिन बाबा जो जो रच सुत दे तया जिस भावे तिसले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर माने करण हर नानक जाने जान लगा हरे किणा तिसकी आसना बिरथि जाए सेवक को सेव अपने कुंभुज भ्रम बोध वाए से अपने विचार जाके मन वसन अलंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंदर पूजे गुरु के पैर लोक सुखे परलोक सोए ले नानकार प्रभापे मिले सासंग मिल करो आनंद गुण गाओ प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाव प्रांतरण कह सुहा वाण पर वेखो नेरा मिटे ज्ञान बिनसें देरा सुन दे सिर दे वसाओ मन चे नानक पल पाओ हल पल दोले सुहा राम नाम तुरधार पूरे गुर के पूरी दिखिया जिस मन विसती साज प्रिख्या मन तन नाम च फूल बुलाए दुख दर्द मन ते हो जाए सच व्यापार करो व्यापार इधर कर वे के तुम्हारी काटे रुकम माए नानक बोर ना हो जाए तिस्ते दूर कहाँ को जब रे अपने यार ते निरपोच वे सकल पमटे प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस पर अवराखे तिस ना ही दुख नाम जब मन हो सुख चिंता जाय मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचनहार सिर उपर ठाडा गुर सूरा नानक ता के कार्य पूरा मत पूरी जामरो जाके देश दर्शन पेख दुर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा सेव पुराण तरजामी प्रभु प्रदान जिस मन बसे सोने हाल ता के निहाल

नानक मन प्रगा सष्ट भय संत संगंत्र प्रभु ठाणा प्रभु का लागा मिठा सकल समुरी खुशक मनायन कण गुस्ताय नौन दमृत प्रभु का नाम देहि मैं सकब सराम सुन समाधन तय नाद कह न जय चर्प समाध तिन देख सियाव दिखाए नानक तिय सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अंत घड़कड़ ब्या प्रया भगवंत धरण मय आकाश प्या सर्वलोक पूर्ण पाल बंतन पर्वत है पावन जैसे आगै तैसा करम पौन पानी बैसंतर माए चार गुण दस समाए तिस ते बिन नहीं कोठा गुर प्रसाद अंकू भाव वेद प्राण समृत मय अक्ष सुरन खत्र मय बाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल कबू डोले सर्व कुल कर गले खेल मोल न पे गुणे मोल सर्वजूत मैं जाकी जो तारे हो स्वामी अथ बोत गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन मैं विश्वास समझना का वेखन सब ब्रह्म समझना के हृदय सब धर्म समझना सुन सो बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की रात सत भजन साधु सब कह जो जो ऐसो इस कुमाने करण करावन हर पव जाने अंतर बसे बार प्यो नानक दर्शन देख सम हो आप सत किया सब सत तिस प्राप्त सगलित पात तिस भावेता करे विस्तार तिस भावेता एक ओंकार कुला लिखना जाए जिस भाव तुझ लय मिलाए कौन उड़कुन कहिए दूर आप आपा प्रभु अंतर का तिस आप जनाए नानक तुझने आप हो जाए सर्वभूतिया अवतारा सब नहण या पिकनारा सकल समग्री जाका तन या पुंजा साहब जनाम जानी खेल बनाया आज्ञाकारी की नीम आया सब की मत अली बथोरे जो कुछ कहना सो आपे गए आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तले समाजते हो सुनाए बुरा और कहो किने कुछ करा भला गुरुदा जी की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब सुहा जोत पोत अपन संग्राह ता की गल मिल गई न जाए दूसर वे तो सोची पाए तिस कह की ऐसा प्रवान गुर प्रसाद नानक खे जान जो जाने तिस दा सुख होया मिलाए ले प्रास होए धनवंत कुलवंत पतवान जीवन मुक्ति हृदय भगवान धन धन धन जनया जिस प्रसाद सब जगत राय

गुणों का स्वयं पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निरपेक्षा सा सुमरो गोविंद मंत्री गुत्र चंदासन त्याग गोत्र संजना की धुन मनोगा आप छोड़ बेनती करो सा संग गुण सा कर तरो हार तन के परले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सा जना सा संग बज परमानंद नर कुमार उदार जी गुण गोविंद नाम दर्श पिय चेचित वो नारायण एक रूप जाके रंग ने गोपाल तुम उदर दीन दयाल तू कुंजन पूर्ण कृपाल समर सुमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम सलोक साध के वचन अमली कला रतन सुनत कुमावते उदार आप तरह लोग कहने सार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा हरंग जय जय सौदना तो वाद जय सुन सुन करे प्रभु का जय प्रभु गोपाल मात के माते नानक रहे तुम के साथ शरण जोग सुन शरण आए कर कृपा रुहा मिलाए मिट गए बैर पै सबरे अमृत नाम साध संग लैन सौ प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेवक की सेवाल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुनसना कहते कर प्रसाद दया प्रभुधारी नानक निभिखे कुमारी प्रभु की सुख संतमेह सावधान का कर चीत सुख मणि सद गुण गुण नाम जिस मन बसे सुध निधान सर्विच ताकि पूर्ण होए प्रधान पुर पुर सब लोए।

विद्या विद्या तप जोग प्रभु ज्ञान ज्ञान सुष्ट सूचना चार पदार्थ गुण प्रकाश सब केवल सकल देवदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदृष्टि एक दृष्टिता फलते ही जन के मुख भाने गुरु नानक नाम वचन मन सुनाय एहन दान जपे मन कोय सब जुग मेता की कत होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर सा सर्वे बखाणी सकल मुतांत केवल हर नाम गोविंद बोल के मन सराम कूड़ बराज सा संगड़े संत कृपा ते जनते छूटे जाके मस्त करम प्रभु पाए सा संगनाम ते जिस मन बसे सुने लाए परे ते जन आवे अर पहुंचे जन्म मरण ता का दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उधार निर्मल शोभा अमृता की वाणी एक नाम मन मय समाणी दुख रोग बिन से बै परमो साध नाम निर्मलता के करम सब देवता की शोभा बणी नानक एह गुण नाम सुख मणि दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के करम।

साहिब जी, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, परणवत नानक तारे सोए, सो कोटल गुरु सेविया।

प्रभु कृपा गुर सतगुर चरण हम बंछे गोविंद जियो सत्संगत मेल कर कृपछे जन्म जन्म के किल विख मल हरिया मिल संगत हर प्रभ हंछे रहाओ तुमरा जन जात अविजाता हर जपयो पतित पविछे हर कियो सगल पवन ते ऊपर हर शोभा हर प्रभ दिन्छे।

जिन हर तार प्रभ उर्छे। हामर टींडे टीम बहुत अत पारी, हर तार कृपा प्रभ मिलछे। जिन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पवित पविछे। बसंत हिंडोल महला चौथा। मेरा एक खिन मनवा रह न सके, नित हर हर नाम रस गीते। ज्यो बारक रसक परयो थान माथा, थन माथा थन काडे बिलल बिली दे। गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे। बड़े पाग गुर सतगुर पाया, विच काया नगर हर सीदे रहाओ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यो जल कमल प्रीत अत पारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जप्यो नानक निरंजन नर हर, उपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरो, हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर। तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बेनती। जन नानक सरन पवी दे। बसंत हंडोल महला चौथा। मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, तिल कर नहीं वासा पाईए। गुर अंकस शब्द गुरु सिर तारियो, अंकर मंदर आण वसाईए। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईए। हौ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाईए रहाओ। कर रतन लाल बहु मानक लादे, मन प्रमया लह न सकाईए। ज्यों ओडा कूप गुजह, ज्यों ओडा कूप गुहज खिन काडे। त्यों सतगुर वस्त लहाईए, जिन ऐसा सतगुर साध न पाया। ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए, जन्म पदार्थ पुन फल पाया। कौडी बदले जाइए, मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा। कर कृपा गुरु मिलाइए, जन नानक निर्वाण पद पाया। मिल साधु हर गुण गाइए। बसंत हिंडोल महला चौथा। आवण जान पया दुख बिखिया, देहे मन मुख सिंगी सुन्य। राम नाम खिन पल ना चेतिया, जम पकरे काल सलुंज। गोविंद जियो बिकहौ मैं ममता मुंज। सत्संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज।

जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर निंज जन नानक मन तन आनंद पिया है गुरु मंत्र दियो हर पुंज। वाहिगुरु बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सेवियो कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार।

तुम बेअंत रहाओ। आज हमारे बने फाग, गुर संगी मिल खेलन लाग। होली कीनी संत सेव, रंग लाला रंग लागा अत लाल देव। मन तन मौल्यो अत अनूप, सूके नाही चा छाव तूप। सगली रुति हरिया होए, सद बसंत गुर मिले देव। बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन पात। त्रिपत अगाने हर गुण है गाए, जन नानक हर हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा। हटवाणी तन माल हाट कीत, जुआरी जुए माहे चीत। अमली जीवे अमल खाए, त्यों हर जन जीवे हर त्याए। अपने हर अपने

कमाइए पूछ जना, सो तपसी जिस साध संग, सद त्यानी सद त्यानी जिन गुरे रंग, से निरपौ जिन पौ पया, सो सुखिया जिस ब्रह्म गया, सो एकांती जिस रिदा थाए, सो इन्हें चल साच ठाए, एक आखो जय एक प्रीत, दर्शन पर सनहित चीत, हर रंग रगा सहज मान, नानक दास तिस जन कुर्बान। बसंत महला पंजवा। जी प्राण तुम पिंड दीन, मुगद सुंदर तार ज्योत कीन, सब जाचक प्रभ तुम दयाल, नाम जपत होवत

मन जन सेख न लहै पेव, जाकी गत मित कही न जाए, कट कट कट कट रहा समाए, जाके पगत आनंद में, जाके पगत को नाही खै, जाके पगत को नाही पै, जाके पगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभ रहो समाए, नानक जाचे एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवा। मिल प्राणी ज्यो हरे, मिल पानी ज्यो हरे बूट, साध संगत त्यो होमे छूट, जैसी दासे तीर मीर, तैसे उदारन गुरह पीर। तुम दाते प्रभ देवन हार, निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ, जिसे परापत साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते पय मुकत, पगत अराधे जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूझी गुर प्रसाद, मन आगाना हर रस स्वाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदारण तेरो नाम, नानक पायो एहो निदान। बसंत महला पंजवा। तुम वडदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगल पोजन खान, मोए निर्गुण

राखो आस एक, नाम तेरे की तरो टेक। सगल कला प्रभ तुम प्रवीन, अंत न पावे जले मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी। जिन तू से व्या सुखी से, संत शरण नानक परे। बसंत महला पंजवा, जिस तू सेवे तिस तू सेव, जिन तू किया तिस तू सेव, जिन तू किया तिस अराध, जिन जियो दिया। तिसका चाकर होए फिर डान न लागे, तिसकी कर पो।

नाम जपयो हर नाम रंग, गुरु प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उर तारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समर्थ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लेहे निस्तार। पव खंडन दुख नास देव, सुर नर मुंजन ताकी सेव, तरण आकाश